0: шүүмрээ нэг зэнг мэдх юм мобайл чат уна. Яа нэг бат савзох юм ка. Хэрмэш мэ.
1: Окей, чара забар да. Сёк ярк кизи бафхан.
2: Ай ми ю ди ди пинг жу зай дэнпу да 2 цэн. Та бу зай ши, ди ди зэ зэдонг шэнгжи вэй лин ши дэн жан.
1: Мэ узэн бэ сарирэг дэ покстон.
0: Дираш дэнг шру. Торт цэ.
1: Мэ узэн пиган центра торт спэмэр за цатр.
2: 踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫。沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾民的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
3: 亚美库耶，这个哎，哇，其实都比多大哎。
1: 那么你把伊拉沃斯莫夸那的，都提克的呀？
3: 我是阿曼，我是卡。
2: 炉火边的团聚，短暂珍贵。虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
4: We check it. That how is the taste? How is the quality of the product?
2: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
4: The food is more difficult than the songs. Chinese would like.कैसे हैं भाई? ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई?
5: 300.
4: कुछ कर लें, कुछ दे देख लें, थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे.
2: 讨价还价，控制成本是第二步。
4: I am nervous because it's not a small business. थोड़ा महंगा बता रहे हैं.
6: ये कम से कम ना करेगा.
4: यार देखना, बस उसी चीज़ पे लगे हुए हैं. थोड़ा सा कम कर लें.
6: उसका वो खरीद
4: नहीं है रिटर्न नहीं देखा ना इसमें कम करें ये मेरे ख्याल में 3,900 जो है ना
6: नो प्रॉफिट नो लॉस आपके साथ
4: थैंक यू
6: अल्लाह
4: बहुत शुक्रिया ओके बहुत शुक्रिया आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
7: इंशाल्लाह हमें भी खुशी हुई
4: प्लीज भेज
2: 与供货商的合作协议顺利签署
4: Agreement is expiring. Okay. Here we are. Here we are. Here
2: we are. 2箱芒果汁的样品摆上艾明的柜台。